0: কিংবা তাদের সম্পূর্ণ মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। শুনলেন মৎস্যজীবী বন্ধুদের জন্য এক সতর্কবার্তা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার বল। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनेपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जाँच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50

0: लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषाद राज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: একটু পরে খবর দিল্লি থেকে।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26 षड्विंशतिः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और

0: 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उपप्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर ट्रुक ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में

0: महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जानने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
3: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: We have seen the comments.
5: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: Regulate the flow of foreign funds.
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
4: While we are coordinated,
5: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय

0: लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
3: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
4: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अक्टूबर 2022 में शुरू

0: ने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान क्यूआर कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
2: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies APEC's digital payments body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
4: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भावपूर्ण गीतों और बातों का कार्यक्रम रस धारा। रसधारा में आज बात होगी भारत छोड़ो आंदोलन की, कारण प्रभाव और इसके बहुआयामी परिदृश्य के बारे में। कार्यक्रम में भावपूर्ण बातों, गीतों और बातों के कार्यक्रम रसधारा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। ये प्रसारण आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ए हरिहरन की आवाज में ली गई इस प्यारे से गीत के साथ।

आज हम रसधारा में बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। गांधी जी द्वारा 1942 में करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की विफलता, युद्ध की कठिनाइयों और राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर इसने व्यापक विरोध प्रदर्शनों और भूमिगत प्रतिरोध को जन्म दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष था। गांधी जी का नारा करो या मरो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का एक निर्णायक आह्वान था। प्रारंभ में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही हिंसक हो गया, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था। राष्ट्र की भावना को समझते हुए गांधी जी ने राज्य के दमन के विरुद्ध प्रतिरोध को नैतिक रूप से उचित माना। इसे अगस्त क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है। यह पारंपरिक सत्याग्रह के बजाय ब्रिटिश शासन की दृढ़ अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता था और अगले 5 वर्षों में भारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी घटनाओं के लिए मंच तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन भारत में एक विशाल उपनिवेश विरोधी संघर्ष था, जिसे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि क्रिप्स मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक कठिनाइयों और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा पूर्ण स्वराज की मांग जैसे पूर्व आंदोलनों से उत्पन्न राष्ट्रवादी भावनाओं में निहित है। युद्ध में ब्रिटेन के कमजोर होने के बाद गांधी जी ने 1942 में आंदोलन शुरू किया और भारतीयों से स्वतंत्रता के लिए करो या मरो का आह्वान किया। यह महान आंदोलन आज ही के दिन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सुनेंगे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में इस प्यारे से गीत को। इसे फिल्म पूरब और पश्चिम से लिया गया है। गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीयों की वर्षों पुरानी निराशा का चरम बिंदु था, जिसके तत्कालिक कारणों में क्रिप्स मिशन की विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न कठिनाइयां और भारतीय सीमाओं पर जापान का दस्तक देना शामिल थे। भारत के स्वशासन संबंधी वादों को पूरा करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता से भारतीय जनता का मोह भंग बढ़ता जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के बावजूद ब्रिटिश सरकार आसानी से सत्ता हस्तांतरण नहीं करना चाहती थी। अगस्त में दिया गया प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन का राष्ट्रवादियों को मांगों को पूरा करने में विफलता इसके प्रमुख कारण थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को अंग्रेजों द्वारा दिए जा रहे समर्थन से भारतीय राष्ट्रवादी विशेषकर गांधी जी बेहद नाराज थे। 1942 तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई दशकों से चल रहा था। राष्ट्रवादी भावनाएं चरम पर थीं। लोग ब्रिटिश शासन से तेजी से असंतुष्ट होते जा रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों की गतिविधि और उनकी भागीदारी की सीमा इसी भावना को दर्शाती है। उन्होंने 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पूरे मन से भाग लिए थे। इसके अलावा किसान सभा आंदोलनों के साथ मिलकर इसने साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए जमीन तैयार की थी। 1937-39 की अवधि में कांग्रेस शासन के माध्यम से स्वशासन की मिठास का स्वाद पहले ही चख चुके थे, इसलिए अब लोग अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की पराजय भी एक प्रमुख कारण थी। सामाजिक आर्थिक कारणों में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी ने देश पर भारी आर्थिक बोझ और प्रतिबंध लगाए। युद्ध के प्रयासों के कारण महंगाई बढ़ी, आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई और करों में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय आबादी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को मिली हार और भारत की सीमाओं की ओर जापानी सैनिकों की बढ़ती बढ़त ने जनता के बीच असंतोष को और बढ़ा दिया। बर्मा से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी ने इस भय को भी दुगना कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई और गांधी जी के नेतृत्व में एक जन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक में हुई और यहीं से प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही उसी दिन गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसमें भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने, युद्ध के बाद एक अंतरिम सरकार के गठन और स्वतंत्र भारत की घोषणा की मांग की गई थी। 8 और 9 अगस्त 1942 को सरकार ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को पुणे में कैद किया गया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में कैद किया गया। हालांकि यह आंदोलन शुरू में सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन यह गांधी जी द्वारा दिए गए अन्य आंदोलनों से भिन्न था। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का रवैया और जिन्ना की सांप्रदायिक राजनीति को उनका समर्थन गांधी जी के लिए निराशाजनक साबित हुआ।

1942 के आंदोलन का लक्ष्य अपने उद्देश्य से कम अस्पष्ट था, क्योंकि इसे भारत से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से वापसी के लिए शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को भारत से दूर करने की कड़ी में पहली मील का पत्थर के रूप में माना जाता है।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:33 और 10 सेकेंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रस धारा अपने रेडियो दोस्त ओम के साथ। भावपूर्ण गीतों और बातों के कार्यक्रम रसधारा में आज बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन के दो चरण थे, जन आंदोलन अगस्त सितंबर 1942 और अर्ध गुरिल्ला विद्रोह चरण। इसके बाद लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक माने जाने वाले हर प्रकार के ढांचे जैसे डाकघर, पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतें, रेलवे और टेलीग्राफ लाइनों को जलाना और नष्ट करना शुरू कर दिया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों की भागीदारी अभूतपूर्व थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने व्यापक भागीदारी की। देश के अधिकांश हिस्सों में मजदूर, छात्र और मध्यम वर्ग के कट्टरपंथी इस आंदोलन में शामिल थे और यह आंदोलन गांवों तक फैल गया। इस आंदोलन में पटना और बनारस के उग्रवादी ग्रुप छात्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में किसानों की भागीदारी सीमित थी क्योंकि यह आंदोलन मुख्य रूप से राष्ट्रवाद पर केंद्रित था। बंगाल और उड़ीसा में आदिवासी समाज ने संघर्ष में जबरदस्त रूप में भाग लिया। सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर पुलिस और प्रशासन के निचले रैंक के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया, जिससे सरकार के प्रति लोगों की निष्ठा कम हो गई। पुलिस समेत कुछ सरकारी अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को गुप्त सूचनाएं दी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्थानीय समुदाय को संगठित करने और भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को लामबंद विशेषकर करने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में आगे हम सुनेंगे बी प्राक की आवाज में केसरी फिल्म से लिए गए इस प्यारे से गीत को। गीतकार मनोज मुंतशिर, संगीतकार अर्को।

दोस्तों, ये प्रसारण आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:41 और 5 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं भावपूर्ण गीतों और बातों का कार्यक्रम रस धारा अपने रेडियो दोस्त ओम के साथ। और आज रसधारा में बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन की। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन का त्वरित दमन किया। गांधी, नेहरू और पटेल जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। हिंसक झड़पों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ, जिनमें 1100 से लेकर 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। वायसराय की परिषद, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रियासतों, भारतीय शाही पुलिस और ब्रिटिश भारतीय सेना के समर्थन से अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए छापे और बल का प्रयोग किया। इसके बावजूद आर्थिक व्यवधान, राजनीतिक दबाव ने

भारत की स्वतंत्रता की अनिवार्यता को और मजबूत कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1944 तक सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन को अंततः अंग्रेजों ने दबा दिया। हालांकि इससे अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का अपना लक्ष्य तुरंत हासिल नहीं हुआ, लेकिन यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण था। भारत छोड़ो आंदोलन अभूतपूर्व उत्साह से भरा था, जिसने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे पहले के आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित NCM और व्यापक CDM के विपरीत यह सबसे कट्टरपंथी और हिंसक आंदोलन था, जो मुख्य रूप से गरीब और श्रमिक वर्गों द्वारा संचालित था, जो युद्धकालीन मुद्रास्फीति से बुरी तरह प्रभावित था। केंद्रीय नेतृत्व की अनुपस्थिति के बावजूद इसमें युवा पीढ़ी, किसान, छात्र, आदिवासी और महिलाओं सहित विविध समूहों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली। इस आंदोलन का स्वरूप जमीनी स्तर का था, जिसमें सभी वर्गों ने नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाया और यह वास्तव में एक जन आंदोलन बन गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण राम, मनोहर लोहिया ने जनता को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में अरुणा आसिफ अली जैसे नए नेताओं का उदय भी हुआ, जो प्रतिरोध के एक चिरस्थायी प्रतीक बन गए। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर है। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे दोस्तों हंसराज हंस की आवाज में फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद से लिए गए इस प्यारे से गीत को। गीतकार देव कोहली, संगीतकार आनंद राज आनंद।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:54 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा अपने रेडियो दोस्त ओम के साथ। आज रसधारा में बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन की। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को तुरंत सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन इसने उनके अधिकार और नियंत्रण को कमजोर किया। इसके बाद विरोध प्रदर्शनों की नींव रखी और अंततः भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाली गति प्रदान करने का नाम भारत छोड़ो आंदोलन है। रसधारा में बस इतना ही दोस्तों। जाते जाते ऐसा देश है मेरा, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान, प्रीता मजुमदार की आवाज में फिल्म वीर जारा से लिए गए इस प्यारे किस्से गीत के साथ अपने रेडियो दोस्त ओम को दीजिए आज्ञा। लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। फिर मिलेंगे दोपहर 12 बजे सुरभि में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे।

0: सम्मेलन का आयोजन BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जाँच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की अपनी मांग दोहराई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल सकती है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honors, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cyber security, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will inaugurate the new office of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited today in Mumbai. The Home Minister will also interact with representatives of State Urban Cooperative Bank Federations and District Associations of

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं और साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इशारा है आपके मनपसंद प्रोग्राम अंजुमन का और साथ है आपकी दोस्त सलाहुद्दीन। और एक बार फिर आप सबों को मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों आज 22 श्रावण है और इससे पहले कि मैं 22 श्रावण के बारे में आपको बताऊं, वक्त हो रहा है आईने का। देखते हैं कि आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। जी हाँ दोस्तों, 22 श्रावण ये दिन रविंद्रनाथ टैगोर की याद में मनाया जाता है। 22 श्रावण बंगाल की सकाफत में सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि एक ऐसा दिन है जब लोग अपने अजीम शायर, अदीब, फलसफी और मुफक्किर रविंद्रनाथ टैगोर को अकीदत के साथ याद करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल 22 श्रावण 1348 बंगाली सन यानी 7 अगस्त 1941 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ।

उनकी वफात के बाद वफाई से श्रावण की याद से जुड़ गया और आज भी बंगाल में इस मौके पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। टैगोर की शख्सियत सिर्फ बंगाल या हिंदुस्तान तक महदूद नहीं थी, वो एक आलमी अदबी शख्सियत थे। उनकी शायरी, कहानियाँ, नावल, मजामिन और गीत इंसानी जज्बात, मोहब्बत, फितरत, आज़ादी और इंसानियत के पैगाम से भरपूर हैं। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी का। फराग गोरखपुरी की इस शेर से इस जज्बे की सदाकत, हुब्बुल वतनी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, आज 8 अगस्त है और आज ही के दिन गांधी जी की पुकार पर भारत छोड़ो तहरीक का आगाज़ हुआ था। 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुंबई इजलास में महात्मा गांधी की तारीखी आज़ादी मुहिम के आगाज़ के मौके पर भारत 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो तहरीक के तौर पर मनाता है। करो या मरो और हिंदुस्तान छोड़ो का ये नारा उन्होंने ही दिया था। इसका मकसद था कि भारत में बरतानवी राज का फौरी खात्मा। ये दिन भारत की जद्दोजहद में एक अहम मोड़ की निशानदेही करता है। तो दोस्तों, अंजुमन इन तमाम मुजाहिद आज़ादी को खराज अकीदत पेश करता है और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक नहायत ही हसीन नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और मौसीकी से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों आज दिन है शनिचर और आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं हमारा हफ्त रोजा प्रोग्राम शहरनामा। पेश है समाजी, मिली और मजहबी सरगर्मियों पर मुबनी हमारा हफ्त रोजा प्रोग्राम शहरनामा।

0: हफ्ते की शुरुआत सावन से हुई और सावन का मजा पूरे शहर ने इस पूरे हफ्ते बखूबी एंजॉय किया। जगह जगह बारिश हफ्ते भर जारी रहा। कभी पानी जमने और कभी ट्रैफिक के मसले से दोचार होने के साथ लोगों ने बारिश को खूब एंजॉय किया। एक जानब बारिश, वहीं रियासत में होने वाले मुख्तलिफ सरगर्मियों के बीच हफ्ता मसरूफियत भरा गुजरा। अगस्त माह आते ही एक जानब जहन हुब्बुल वतनी की जानब गामजन हो जाता है, वहीं कुछ खास दिन भी इस माह की खासियत है। एक जानब हर घर तिरंगा की तैयारी जारी रही और दूसरी जानब ब्रेस फीडिंग वीक और हैंडलूम डे ने रियासत को दूसरे अंदाज में मसरूफ रखा। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है। रियासती बजट पर अमल करते हुए वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यकुम अक्टूबर से 38% डीए जारी किया जाएगा। इससे कबल 18% डीए बढ़ाया गया था। रियासती बजट के मुताबिक रियासती मुलाजमीन 38% के मुताबिक डीए मिलेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुज़श्ता दिनों तारातल्ला में ज़ेरे तामिर गोदाम का छत गिरने से मजदूरों की हुई मौत की वजह से हुकूमत चौकस हो गई थी। रियासती हुकूमत ने शहर में तमाम तामीरात पर रोक लगा दी। कितनी मंजिला इमारत तामीर हो रही है और कितनी की मंजूरी मिली है, क्या क्या प्लान में शामिल है और क्या तब्दीलियां की गई है, ये तफसीलात लेने के लिए रियासती हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील की है। कॉर्पोरेशन की जानिब से एक फॉर्म जारी किया गया ताकि वो इसकी तफसीलात ले सके। अभी तक 150 बिल्डिंग को मंजूरी मिली है, लेकिन कोई बिल्डर प्लान के बाहर काम करेगा तो बड़ा जुर्माना अदा करना होगा। 2 मंजिले की जगह 3 मंजिला कर दिया गया या फिर अपनी मर्जी से लिफ्ट लगा दिया गया, ये कार्रवाइयां नहीं चलेंगी। वजीर शहरी व देही तरक्कियात अग्नि मित्रा पॉल ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक की मंजूरी मिली इमारतों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लान पर अमल करते हुए काम करना होगा।
1: তার মধ্যে আমরা যদি দেখি যে না, এটা একেবারেই আমাদের এখানকার মাটি খুব সফট অ্যালুমিনিয়াম।

0: बंगाल की राजधानी कोलकाता और हावड़ा में शहरी सर्विस को बेहतर करने के लिए वार्डों की हदबंदी का काम किया गया है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट लैंड डिपार्टमेंट में जमा कर दी गई है, जिसके पेश नज़र कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड 144 से बढ़ाकर 209 कर दिए जाएंगे, जबकि हावड़ा के वार्ड 50 से बढ़ाकर 68। इस सिलसिले में 12 अगस्त को खसूसी असेंबली इजलास में ये तरमीमी बिल पेश की जा रही है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने जुमरात को नबान्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी इतला दी। माँ का दूध बच्चे के लिए मुफीद होता है, लेकिन जहाँ ये बच्चे की नशोनुमा के लिए जरूरी है, वहीं माओं के लिए भी ये अहम है। इस अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल ये हफ्ता मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026 आलमी सतह पर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की तावन से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के साथ मिलकर सालाना मुहिम का मकसद बच्चों के तहफूज, फरोग और हिमायत पर मरकूज है। इस दिन में डॉक्टर उमा मुखर्जी ने कहा कि
1: मैं डॉक्टर उमा मुखर्जी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड ऑन 1st to 7th August एवरी ईयर। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ इज द थीम फॉर 2026। ब्रेस्ट मिल्क में क्या रहता है? इट कंटेन्स वाटर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, एंटीबॉडीज एंड विटामिंस। 88% ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में वाटर रहता है, which helps to keep the baby hydrated, and 12% is packed with essential nutrients and active immune factors. ये डायरेक्टली बेबी का नर्व सेल्स, ब्रेन का व्हाइट मैटर ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट। फर्स्ट 6 months इज एक्सक्लूसिव।

0: aggressive breastfeeding recommended by WHO. ब्रेस्ट मिल्क कैसे स्टोर कर सकते हैं, जो वर्किंग मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. फ्रेशली पम्प्ड ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर में आप स्टोर कर सकते हैं 4 आवर्स, फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 डेज, इंसुलेटेड कूलर और बैग्स विद आइस पैक्स में 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं, एंड फ्रीजर में -18 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 4 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं. ब्रेस्ट मिल्क देने का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. अगर मदर को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फ्लू हुआ है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, फीवर है, उसमें भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं. तो प्रॉपरली मास्क पहन लीजिए एंड आपको ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए. ब्रेस्ट मिल्क आप दे सकते हैं. इवन मदर इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस और HIV और इवन कैंसर, इफ सी इज अंडर मेडिकेशन, तो इसमें ब्रेस्ट मिल्क देने में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है. सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग को प्रमोट करना चाहिए.
1: भारत में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है. यह हथगर बनाने वाले बरादरी को इज्जत देने का बहाना है. देसी टेक्सटाइल को फरोग देना और 1905 में स्वदेशी तहरीक के आगाज की याद में ये दिन मनाता है, जिसने घरेलू सामान और खुद इनसारी को फरोग दिया था. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के वजूद में आने के बाद 1905 में तमिलनाडु में पहली हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई. उस वक्त से बुनकरों को कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तादाद में इजाफा किया गया. इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि
2: 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है. 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई. अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई में जन जन जुड़ गए. अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया. मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है. और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बना और नई नई वेराइटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है. और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वेराइटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं. हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर. आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें.

0: कोई भी जान अहमियत का हामिल है। हेलमेट के बजाय बगैर बाइक चलाने पर हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान जुर्माना भी लिया जा रहा है। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि जुर्माना लेना सिर्फ मकसद नहीं बल्कि लोगों में बेदारी फैलाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्सर डिलीवरी बॉय अपनी जान की परवाह किए बगैर रैश ड्राइविंग करते हैं और हादसा का शिकार होते हैं। ऐसे बाइकर्स को भी अपील की गई कि एहतियात बरतें और सिर्फ सेफ्टी का भरपूर ख्याल रखें। इस जिम में हमने एक पुलिस ऑफिसर से बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: सड़क निरापत्ता सप्ताह उपलक्षे अपने सकल के धन्यवाद जानाई एवं एटा एक आनंदेर विषय आछे। सड़क निरापत्ता सप्ताह किंतु शुद्ध सप्ताह बा व्यापी विषय नय, एटा सारा बछर धरे चले आमादेर एवं रोड सेफ्टी माने सब समय इम्पोर्टेंट आछे। जे कोनो प्राण आमरा हाराई एटा किंतु मूल्यवान आछे एवं ए मूल्यवान प्राण किंतु सड़क दुर्घटनाएं हरानो खूब दुखेर विषय आछे। नतून सरकार दायित्व ग्रहण करार पर थेके जननिरापत्ता विशेष करे महिला सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा निये सर्वोच्च एकाधिकार देवा हुए छे। समग्र कोलकाता महानगर जुड़े हेलमेट छाड़ा मोटर बाइक चलानो विरुद्ध विशेष अभियान चलानो हुए छे। ए अभियान टा किंतु मानुषे निरापत्ता जन्ने बेसी आछे। आमरा जे सड़क निरापत्ता बा रोड सेफ्टी निये जेगुलो करी ट्रैफिक फाइन और उद्देश्य किंतु फाइन निया नय, उद्देश्य आछे मानुष सचेतन करा एवं बार बार जे भूल करछेन ओई भूल थेके बिरत होवार जन्य।
0: दोस्तों आप अभी समाप्त फरमा रहे थे समाजी मुआशी और मिली सरगर्मियों पर मुबनी हमारा हफ्त रोजा प्रोग्राम शहरनामा। आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ तलत सलाहुद्दीन और फिलहाल वक्त हो रहा है एक और खास प्रोग्राम का जो हर शनिचर हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं, वो है साइंस खेल खेल में। पेश है प्रोफेसर नदीम हैदर की खास पेशकश।
2: मौजूद सामिन आप सबका खैर मकदम है हमारे आज के तालीमी और मालूमाती प्रोग्राम साइंस खेल खेल में। आज हम बात करेंगे इस दिलचस्प मौजू पर कि कैसे साइंस को खुश्क फार्मूलों से निकाल कर खेल मुशाहदे और तजुर्बे के रंगों से ढाला जा सकता है, कैसे बच्चों को

0: पेश है हमारी खास पेशकश हिंदी उर्दू लेसन।
1: दोस्तों आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम उर्दू सीखेंगे। आज के इस किस्त में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माहिर उस्ताद जनाब शाहिद जलाल हाशमी साहब। सर आज आप हमारे सामिन को क्या सिखाएंगे?
2: जी अब तक तो हमने अज्जाए कलाम और लफ्ज जुमले सीख चुके हम लोग। आज इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे मुजक्कर मुअन्नस या यूं कहें तज़किर तानिस, जिसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उर्दू की खूबसूरती में। बल्कि यूं कहें कि उर्दू और हिंदी में अगर कोई फ़र्क है तो ये तज़किर तानिस ज़्यादा फ़र्क पैदा करता है। ये तज़किर तानिस यानी कि मुजक्कर और मुअन्नस का अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो उर्दू की जो खूबसूरती है उस पर वो दाग या धब्बा लग जाता है।
1: जी
2: इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये अगर बहुत बारीकी से अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की और सुनने की जरूरत है,
1: इसे बोलकर मश्क करने की भी जरूरत है
2: बहुत ज्यादा।
1: जी
2: ये सिर्फ हम पढ़कर या सिर्फ हम एक बार सीख जान लिया सीख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा अल्फाज हैं और मुजक्कर मुअन्नस के बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए से मुजक्कर को मुअन्नस और मुजक्कर को मुअन्नस को मुजक्कर बनाया जाता है और किस जगह पे मुजक्कर इस्तेमाल करना है किस जगह मुअन्नस ये भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है।
1: जी
2: तो हम लोग आज मोटी मोटी बातें जानेंगे जिसके जरिए से हम मुजक्कर और मुअन्नस को पहचान सकते हैं आम जबान में आम मानों में स्टार्टिंग तौर पे जो शुरुआती दौर जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए कि इस तरह से हम लोग फर्क पता कर सकते हैं, वरना ये बहुत ही यूं समझ लेंगे समंदर की जैसा ही।

0: करामत ये तरीका है, ये
1: बिल्कुल है ये, शायद मुझे ऐसा लगता बहुत है कि लोग थोड़ा सा क्लियर करें इसको
0: नहीं,
1: डिटेल
0: नहीं,
1: में
0: ये बहुत अच्छा आपने याद दिलाई ये चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे आते हैं जो कि नहीं पढ़ा कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और पता नहीं वो फार्मूला जो बताया गया कायदा उसके मुताबिक भी है कि नहीं है, तो वहाँ पे एक ही जरिया है पहचानने का कि देखो उसके पहले क्या है, का लगा हुआ है या फिर की लगा हुआ है, और दूसरा ये है कि लास्ट में देखो
1: आखिर में तो देखना
0: आखिर
1: ही
0: में
1: है।
0: क्या लगा हुआ है,
1: लेकिन कभी कभी कुछ मुज़क्कर होते हुए भी मौनस होता है, और मौनस होते हुए भी पहचान मौनस होते हुए भी
0: पहचान
1: मुज़क्कर है।
0: आखिर में वो लफ्ज का आखिर नहीं देखना है, जुमले का आखिर में देखना है,
1: हाँ।
0: था लगा हुआ या थी लगा हुआ है, इससे पता चल जाएगा कि वो चीज मुज़क्कर है या मौनस है। ये अच्छी याद दिलाई आपने ये बात, ये बहुत जरूरी है ये चीज, इसको फॉलो करना कि अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे फॉर्मूला के मुताबिक है या नहीं है, तो फिर फॉलो करना है उसके पहले का के की क्या लगा हुआ है,
1: जी,
0: और लास्ट में देखना है कि था है या थी है, है या फिर क्या लगा हुआ है, उस तरीके से गा लगा हुआ है या गी लगा हुआ है, उससे हम लोग अंदाजा कर लेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सीखने का, मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग करने का। और ये तो हो गए मुज़क्कर मुअन्नस, ये मुज़क्कर मुअन्नस के जरिए हम लोग किसी भी उर्दू की खूबसूरती को निखारते हैं। और एक और जरिया है जो कि वो मैंने कहा था तलफ्फुज, तलफ्फुज के बगैर उर्दू की समझिए जान ही खत्म है, रूह निकल जाए, तलफ्फुज भी बहुत जरूरी है। और एक और चीज रखना है ध्यान कि जो हरकात जो बहुत शुरू में सिखाया गया था एपिसोड में पहले, जबर और जेर और पेश, ये बहुत माने रखता है, इसके चेंज करने से माने बदल सकता है। मैं चंद एग्जाम्पल देना चाहूंगा, दाल मीम के ऊपर अगर जबर है तो वो दम पढ़ाता है जिसका मतलब होता है सांस, और दाल मीम के अगर ऊपर पेश डाल दिया जाए तो वो हो गया दुम जिसका मतलब होता है पूंछ।
1: यानी हरकात की वजह से, अराब की वजह से
0: लफ्ज वही है,
1: सेम ही
0: हरकात की वजह से माने बदल गया,
1: तो वही है
0: बिल्कुल,
1: लेकिन सिर्फ हरकात की वजह से माने बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल, दाल लाम जबर दल होता है ग्रुप गिरोह, और दाल लाम जेर दिल बदन का एक हिस्सा दिल, इस तरीके से है ये जान सकते हैं। और एक और होता है कि लफ्ज वो की है जैसे शेर
1: जी,
0: शीन ये रे कहा गया शेर,
1: शेर
0: जंगल का बादशाह
1: जी बिल्कुल,
0: और एक होगा शीन ऐन रे वो भी शेर है, लेकिन वहाँ पे ये है यहाँ पे ऐन है, इसका मतलब हो गया कि वो शेर व शायरी गजल नज़्म,
1: ये एक जैसी आवाज है,
0: आवाज एक जैसी है,
1: इमला अलग अलग है बट आवाज एक जैसी है
0: जी, ये भी जानना बहुत जरूरी है ध्यान देने की।
1: सर आपने बहुत ही बेहतरीन बातें बताई हैं, सामीन को ये बात बहुत पसंद आई होगी, अब कवायद सीखने का तरीका भी बहुत पसंद आया होगा। उर्दू है प्यारी, उर्दू है निराली, लफ्जों की दुनिया जैसे हो कहानी, तो लफ्जों की कहानी को सीखना है, पढ़ना है, और हमेशा मश्क करते रहना है। गुजारिश करूंगी कि आप इसे रिकॉर्ड जरूर करें ताकि इसको बेहतर तरीके से मश्क कर सकेंगे। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बहुत शुक्रिया।
2: दोस्तों आप अभी समाप्त फरमा रहे थे हिंदी उर्दू लेसन, जहां हमने सीखा तस्किर तानिस की।

56 मिनट और 4 सेकंड हुए हैं और फिलहाल इशारा है एक निहायत ही खूबसूरत नगमे का। सुनते हैं अरिजीत सिंह और तरन्नुम मल्लिक जैन को, फिल्म का नाम एक दिन, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और मौसीकी है राम संपत की।

या दोस्तों कुछ ख्वाब तो देखने के लिए ही होते हैं। एक शेर फिलहाल जहन में आ रहा है कि जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस सिमत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुमसा है कि तुम हो। तो संजुमने वक्त और आपसे इजाजत लेने का, मैं तलत सलाउद्दीन आज के लिए इजाजत लेती हूँ। मैं फिर हाजिर होंगी कुछ प्यारे नगमों के साथ, कुछ अनोखे वाकयात के साथ। यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। अब कुछ ही देर में आप समाप्त फरमाएंगी वेस्टर्न प्रोग्राम, जहाँ साथ होंगी शाइनी चटर्जी।

0: मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। सुरभि में आप सुनेंगे चर्चा है में आज बात होगी भारत छोड़ो आंदोलन की और पहल के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। दोस्तों ये प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ एक ऐतिहासिक जन आंदोलन था। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की थी। ब्रिटेन ने बिना भारतीयों की सहमति के भारत को युद्ध में झोंक दिया था। क्रिप्स मिशन की असफलता, 1942 में आया क्रिप्स मिशन भारतीयों को पूर्ण स्वराज का आश्वासन देने में विफल रहा। महंगाई और युद्ध जनित परेशानियों से आम जनता त्रस्त थी। 9 अगस्त 1942 की सुबह ही गांधी जी, नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेताओं के जेल जाने के बाद भी देश की जनता खुद सड़कों पर उतर आई और बिना नेतृत्व ही आंदोलन गति जारी रही और आंदोलन अपने असली रूप में बढ़ता रहा। अरुणा आसिफ अली और उषा मेहता जैसे नेताओं ने छिपकर रेडियो संचालन और आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे से पूरे देश को जागृत कर दिया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन था जिसने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा देते हुए भारत को स्वाधीनता दिलाई। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: मां जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:09 हुए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि। सुरभि की दूसरी कड़ी पहल के अंतर्गत आज बात होगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जो एक शक्तिशाली जनसांख्यिकी लाभांश है। उद्योग संबंधी कौशल से लैस कार्यबल की तत्काल आवश्यकता पैदा कर शिक्षा अब नियोक्ता की अपेक्षा को पूरा करने के माध्यम से कौशल कुशल कार्यबल, सतत आर्थिक विकास, उच्च उत्पादकता, मजबूत निवेश प्रवाह और वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति के लिए आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के क्रमिक संस्करणों के माध्यम से अपने प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम को लगातार मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से स्किल के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना है, ताकि वे रोजगार योग्य बन सकें और स्थायी आजीविका अर्जित कर सकें। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किया था, जिसका उद्देश्य देश भर के करोड़ों युवाओं को कौशल प्रदान करना था। इसके तहत अत्याधुनिक केंद्रों में देश में या कुशल कारीगरों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, राष्ट्रीय उद्योगों और ग्रामीण आजीविका की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करना है, जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। PMKVY 2015-16 वह पायलट चरण था, जिसने परिणाम आधारित प्रशिक्षण और प्रमाणन मॉडल की स्थापना की। मजबूत गुणवत्ता मानकों के साथ एक संशोधित बेहतर संस्करण, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 जुलाई 2016 को 12,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसे केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय प्रायोजित, केंद्रीय प्रबंधित और केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटकों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भारत सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना का नवीनतम चरण है, जिसे MSDE द्वारा NSDC के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह भारत के उद्योग अनुकूल, मांग आधारित और प्रौद्योगिकी सक्षम कौशल विकास के अवसर प्रदान करता है, जिससे रोजगार क्षमता, उद्यमिता और करियर में प्रगति को मजबूती मिलती है। गुणवत्ता, लचीलापन और परिणाम आधारित कौशल विकास पर जोर देते हुए 2023 में शुरू की गई PMKVY 4.0 योजना आधुनिक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करती है और साथ ही आजीवन सीखने को बढ़ावा देती है। यह योजना डिजिटल प्रौद्योगिकियों, मिश्रित शिक्षा, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और मजबूत उद्योग साझेदारी को एकीकृत करती है, ताकि उम्मीदवारों को व्यावहारिक रोजगार के लिए तैयार कौशल प्राप्त हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योग से संबंधित योग्यता आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता को बढ़ाना, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, पाठ्य

कार्यक्रम के डिजाइन, वितरण और मूल्यांकन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मिश्रित शिक्षण और लचीले मॉडलों के माध्यम से पहुंच का विस्तार करना, अनुभवी कर्मचारियों के लिए पूर्व अनुभव की मान्यता RPL को शामिल करना, समावेश का समर्थन महिलाओं, वंचित समूहों और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों को जोड़ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उम्मीदवारों को कुशल रोजगार में प्रवेश करने के लिए 3 अलग अलग रास्ते प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग शुरुआती स्तर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सीखने वालों से लेकर अनुभवी कर्मचारी और विशेष लक्षित समूह शामिल हैं। अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षा की मान्यता, विशेष परियोजनाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कार्यक्रम के अंत में चलते चलते सुनेंगे सोनू निगम, रूप कुमार राठौर की आवाज में फिल्म सरफरोश से लिए गए इस प्यारे से गीत को। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त ओम को दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।

0: the FM, that the necessity of regular health checkup is very, very important. We are almost done with this session. I'll just go for a short break of 10 minutes because I need to drink water. You know, I need to fill up my bottle. It's 59 minutes past 12 o'clock in the afternoon, so I'll be getting for a 10 minutes short news break and then come back right at 1:10 with a lot more to talk about because today is the 8th of August 2026, being observed as the demise anniversary of the poet of India, Rabindranath Tagore. Stay tuned.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजीलॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक, पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी के मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांच मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा

0: हमारी संवाददाता से।
1: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
3: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार GI टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में

0: खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হলো সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলো হার্টজে। একটু পরেই শুনবেন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त तथा

0: विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक छात्र संगठन है। उन्होंने मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संगठन अपनी सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाकर शहरी बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया कास 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि कैश फ्री पेमेंट्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पार्टी सांसद तरुण चुग ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर, वकील, व्यापारी और अन्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए माफियाओं को जबरन वसूली की रकम देने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज टेंडोग लेहो रम फाट के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि यह त्यौहार लेप्चा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत तथा उनकी भूमि के बीच अटूट संबंध का एक सुंदर उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep national interest at the centre of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's

आकाशवाणी कोलकाता का ये संजयता चैनल है। 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर अब शुरू होने वाला है कार्यक्रम उर्वशी। उर्वशी के अंतर्गत हर शनिवार हम मिलते हैं किसी न किसी मोहिनी से, और आज की जो मोहिनी है वो रूप बदलती रही, कभी सदमा की मासूमियत बनी, कभी नगीना की नागिन बन दुनिया को हैरान कर गई, कभी मिस्टर इंडिया की हवा हवाई बन आसमान छू लिया, तो कभी चांदनी बन प्रेम की उजली किरण बन गई। चालबाज में हंसी की बौछार थी, लम्हे में भावनाओं का अतह सागर, जुदाई में लालच का चेहरा भी दिखाया तो इंग्लिश विंग्लिश में आत्मसम्मान की नई परिभाषा लिख गई। और जब मॉम बनकर लौटी तो अभिनय की दुनिया ने एक बार फिर सिर झुकाकर कहा, कुछ कलाकार सितारे नहीं होते, वो स्वयं आकाश बन जाते हैं। आप सुन रहे हैं उर्वशी, और मैं बात कर रही हूं जिस मोहिनी की, वो है श्रीदेवी। श्रीदेवी कपूर, उनका जन्म अयम्मा यंगर अयप्पन 13 अगस्त यानी कि इसी महीने 1963 को हुआ, और जिन्हें हम श्रीदेवी के नाम से पर्दे पर हमने जाना। वैसे तो इन्होंने शुरुआत तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ जैसे भाषाओं के जो फिल्में हैं उससे की थी, लेकिन अगर हिंदी भाषा की हम बात करें तो उनकी शुरुआत 16वां सावन से हुआ। फिलहाल किसी कलाकार की पहचान कभी एक ही गीत से बन जाती है तो कभी बहुत से दशक लग जाते हैं, और जिस गीत ने इन्हें कलाकार बनाया, डांस

क्वीन बनाया। जी हाँ, हिम्मत वाला तो है ही, लेकिन साथ साथ 1987 की ये फिल्म कौन भूल सकता है। आवाजें, जी हाँ, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। जावेद अख्तर ने गीत के बोल लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया।

कहते हैं इनको हवा हवाई और वाकई इन्होंने बिजली गिराई दी। 1987 की बात है, ऐसे ही गीत बनाई किसी ने जिसने कभी नहीं सोचा था कि ये जीवंत मनोरंजन संस्था बन जाएगा कभी। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान निर्देशक शेखर कपूर ने श्रीदेवी को कई दृश्य में पूरी तरह स्वतस्फूर्त अभिनय करने की छूट दे दी थी। विशेषकर चार्ली चैपलिन वाला प्रसिद्ध दृश्य काफी हद तक उनके अभिनय कौशल और तत्काल रचनात्मकता का परिणाम था। फिल्म में अमरीश पुरी का मोगैम्बो खुश हुआ जितना लोकप्रिय हुआ, उतनी ही चर्चा श्रीदेवी के हास्य अभिनय की हुई। और इस समय अधिकांश नायिकाएं केवल रोमांटिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं थीं, लेकिन श्रीदेवी ने सिद्ध किया कि एक अभिनेत्री भी पूरी फिल्म अपने कंधों पर उठा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही उन्हें देखा हमने सदमा में। अब बारी है उस गीत की जिसने भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार नृत्य प्रस्तुतियों में अपना स्थान बनाया। सपेरे की बीन पर थिरकती श्रीदेवी आज भी दर्शकों की स्मृतियों में जीवित है। फिल्म नगीना अमर बन गई, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, उस दौर की विरल फिल्मों में से थी ये फिल्म जिसमें पूरी कहानी लगभग नायिका के इर्द गिर्द ही घूमती है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना था कि इसकी सफलता ने ये स्थापित किया कि किसी महिला प्रधान फिल्म को भी दर्शक बड़े उत्साह से स्वीकार कर सकते हैं। और उस समय श्रीदेवी ने नागिन की देह भाषा को विश्वसनीय बनाने के लिए सांपों की गतिविधियों का अध्ययन किया था। उनके चेहरे के भाव, आंखों की गति और हाथ की मुद्राएं इतनी प्रभावशाली थी कि ये गीत भी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित नृत्य गीतों में शामिल हो गया। हम बात करें श्री देवी की आज की मोहिनी उर्वशी के अंतर्गत। आप सुन रहे कार्यक्रम उर्वशी 297.6 मीटर था 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी संचयिता के अंतर्गत।

आज भी अनेक नृत्य प्रतियोगिताओं में इस गीत की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। यदि किसी एक फिल्म ने श्रीदेवी को रोमांस के शाश्वत प्रतीक बना दिया तो वो थी नगीना और उसके बाद चांदनी। सफेद साड़ी, सहज मुस्कान और अनुपम अभिनय ने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, निर्देशक यश चोपड़ा ने कई अवसरों पर स्वीकार किया कि चांदनी उनके करियर की अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी और श्रीदेवी ने इस चरित्र को असाधारण गरिमा प्रदान की। इस फिल्म के बाद सफेद शिफॉन साड़ियों का फैशन पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय पॉपुलर हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इस समय श्रीदेवी केवल एक अभिनेत्री नहीं अभिनेत्री तो वो थी, लेकिन वो नहीं रही क्योंकि वो फैशन और सौंदर्य की राष्ट्रीय पहचान जो बन गई थी। फिल्म के गीत, वेशभूषा, उनके भावपूर्ण अभिनय ने फिल्म सब मिलाकर अगर देखें तो ऐसे प्रभाव छोड़ दिए कि चांदनी भारतीय रोमांटिक फिल्मों की कालजयी कृतियों में गिनी जाने लगी। तो सुनते हैं इस गीत को। आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है और आप जुड़े हुए जिस कार्यक्रम के साथ वो है उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी सुन रहे हैं आप। एक ही फिल्म में दो बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व निभाना आसान तो नहीं होता, लेकिन श्रीदेवी ने चालबाज में ऐसे ही अभिनय की पाठशाला बना दी। अब जिस गीत के साथ आप जुड़ेंगे वो है न जाने कहां से आई है। फिल्म चालबाज में श्रीदेवी ने जुड़वा बहनों अंजू और मंजू की भूमिकाएं निभाई। उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। अभिनय विशेषज्ञ आज भी इस फिल्म का उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि दोनों पात्रों की आवाज, चाल, मुस्कान, चेहरे के भाव और संवाद बिल्कुल अलग दिखाई देती है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि लोकप्रिय गीत जिसे आप सुनने वाले हैं, शूटिंग के दौरान श्रीदेवी तेज बुखार से पीड़ित थी, फिर भी उन्होंने अपने प्रदर्शन में कहीं भी थकान नहीं आने दी। इस समर्पण ने उनके पेशेवर दृष्टिकोण को और अधिक सम्मान दिलाया तथा इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। हम बात कर रहे थे चालबाज फिल्म की, वो गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। 5:45 आप जुड़े हुए कार्यक्रम उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी के साथ।

न जाने कहां से आई है, न जाने कहां चली गई। 13 अगस्त इसी महीने इनका जन्मदिन है, 1963 को जन्मी श्रीदेवी। 24 फरवरी 2018 इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी में आज हमने बात की श्री देवी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, संचिता थी आपके साथ। अब उस फिल्म की बारी है और उसकी ओर बढ़ती है जिस समय के साथ भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म का नाम लम्हे। श्रीदेवी की दो पीढ़ियों के दो अलग अलग किरदार निभाकर अभिनय की नई मिसाल कायम की थी। लम्हे का आज भारतीय सिनेमा की सबसे साहसिक और परिपक्व फिल्मों में माना जाता है। इसमें श्रीदेवी ने माँ और बेटी दोनों भूमिकाएं निभाई और दोनों के व्यक्तित्व को इतनी स्पष्टता से प्रस्तुत किया कि दर्शक उन्हें अलग अलग पात्रों के रूप में स्वीकार करते हुए नजर आए। आकाशवाणी कोलकाता का ये संचिता चैनल है। इसी के साथ कार्यक्रम उर्वशी यहीं पर खत्म होता है। आगे मिलते हैं 7:30 पर लेकर कार्यक्रम दर्पण। तब तक सुनते रहिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लम्हे से ये गीत।

0: West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 27, informs that Ajgar Mistri, aged about 37 years, height 5 feet, color skin sallow, is missing since 13th February 2026 from Khorupala, Harua, North 24 Parganas. Special Superintendent of Police also informs that Ranjan Dash, aged about 51 years, normal build, height 5 feet 7 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 12th July 2026 from Bijayanagar, Nuihati, North 24 Parganas. Anarul Hussain from Postla, Birbhum, informs that Sahinur Khatun, aged about 16 years, healthy build, height 5 feet, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 20th April 2026. Special Superintendent of Police, CID, Missing Persons Bureau, West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 27, informs that Dibakar Ghosh, aged about 63 years, medium build, height 5 feet, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 29th November 2024 from village Gomai, police station Kirnahar, district Birbhum. Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 27, or Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lal Bazar, Kolkata 1. Let's take a look at the programs of our evening transmission. At 6:10 p.m., a program of Western music, Kirtan by Pranuti Sengupta, will be aired at 7:10 p.m. At 7:30, composite Hindi program Darpan, a program of Hindi film songs at 8 p.m. At 10 past 8, sports news in Bengali. At 8:15, This Week in Parliament. At 8:30, Urdu magazine program Kehkasha. At 8:45, Samachar Sandhya. Spotlight at 9:16 p.m. followed by Sanskriti Bharati at 9:30 p.m. Those were the programs of our evening transmission, and that is the end of our local announcements. Stay tuned for the news to be relayed from Delhi.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath main Vishal Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का आग्रह किया है। ये निगम देश के सहकारी बैंकों का एक प्रमुख संगठन है। उन्होंने मुंबई फोर्ड क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य नाविकों, नौवहन कंपनियों, बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय

0: ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति कर रहा है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वर्ल्ड इंडिया कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हूती विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The 70s soul era taught us one thing. Soul music isn't just music, it's feeling. It's pain and joy on the same dance floor. Thank you for spending 40 minutes of pure soul with us. Goodbye, keep your heart soulful and your feet dancing.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में उभर रहे नए क्षेत्र युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा। इससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। इन समझौता ज्ञापनों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के

0: तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के सहयोग को मजबूत करना है। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी पर भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के बीच आज दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता हुई।
1: सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति में नाविकों की भूमिका सबसे प्रमुख है। मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री देशों में से एक बनकर उभरा है। इस अवसर पर व्यापक डिजिटल समुद्री गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ई समुद्र का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। यमन में हौसी विद्रोहियों के खिलाफ सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के बार बार हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अश्मिता चलेहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi today urged the students of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, to keep the national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. Mr. Modi made these remarks while addressing the 57th convocation of IIT Delhi. The Prime Minister said that new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said that production has begun at India's first semiconductor unit. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion, the Prime Minister also inaugurated a high-performance computing facility, Parampragya, at IIT Delhi. Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, today said that seafarers remain at the heart of India's maritime growth story and reaffirmed the government's commitment to ensuring that every seafarer is safe, respected and supported. Speaking at a national stakeholder interaction on seafarer security, safety and welfare in Mumbai, Mr. Sonowal said, India has emerged as one of the world's leading seafaring nations. On the occasion, E-Samudra, a comprehensive digital maritime governance platform, was also inaugurated. The platform aims to provide seamless, transparent and citizen-centric services to seafarers, shipping companies, ports, service providers and other maritime stakeholders. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cybersecurity and digital safety.

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचेता चैनल है 297.6 मीटर 3008 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम दर्पण में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2026। दर्पण का पहला भाग एक नजर। आज एक नजर में हम बात करेंगे ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की। आज 84वीं वर्षगांठ है। 1942 में आज ही के दिन मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी आवाज उठी थी जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग रखी और महात्मा गांधी ने देश को दिया अपना ऐतिहासिक मंत्र, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि आजादी के लिए आखिरी और निर्णायक संघर्ष का ऐलान था। इसलिए हर साल 8 अगस्त को ये दिन उन लाखों भारतीयों के लिए साहस और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने आजाद भारत का सपना देखा और इसके लिए संघर्ष किया। 1942 में ऐसा क्या हुआ कि भारत छोड़ो की आवाज उठी? इस आवाज के पीछे कई सालों का गुस्सा, कई ताजा वजह। 1942 में ब्रिटिश सरकार का क्रिप्स मिशन भारत को तुरंत आजादी देने में नाकाम रहा। ऊपर से ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से सलाह किए बिना देश को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। युद्ध के बीच महंगाई, खाने की कमी, बेरोजगारी ने आम लोगों को मुश्किल में डाल दी। अंग्रेजी सरकार की गिरफ्तारियां, सेंसरशिप, सख्त नीतियां अलग से लोगों का गुस्सा बढ़ा रही थी। अब भारतीय नेताओं को लगने लगा था कि आधे अधूरे सुधारों से काम नहीं चलेगा। देश को चाहिए था पूरा स्वराज और इसी सोच ने भारत छोड़ो आंदोलन की जमीन तैयार की। गांधी जी की आवाज तो थी आगे, लेकिन लड़ाई पूरी देश ने लड़ी। आठ अगस्त को गांधी ने करो या मरो का संदेश दिया, लेकिन अगले ही दिन अंग्रेजों ने गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि नेताओं को जेल में डालते ही आंदोलन जो है वो शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद आम लोग खुद आगे आने लगे। अरुणा आसफ अली,

एक ग्वालिया टैंक मैदान में एक तिरंगा फहराकर विरोधी की आवाज बुलंद की। उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो के जरिए आंदोलन के संदेश लोगों तक पहुंचाए। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। यानी नेताओं को कैद किया जा सकता था, लेकिन आजादी की आवाज को बिल्कुल नहीं। यही भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी। ये सिर्फ नेताओं का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि आम लोगों का आंदोलन बन गया। छात्र सड़कों पर उतरे, किसानों और मजदूरों ने विरोध किया और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन, हड़ताल, गुप्त गतिविधियां जारी रही। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए गिरफ्तारियां और सख्त कार्रवाई की, लेकिन इससे लोगों का हौसला नहीं टूटा। आंदोलन को भले ही अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी, भारत अब गुलामी की जंजीरों से ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। 1942 ये क्रांति 1947 की आजादी की राह में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, बल्कि इसके लिए लड़ाई की गई थी। आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट डे 2026 पर, जब हम गांधी, अरुणा सफली, उषा मेहता और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की पुरानी तस्वीरें देखते हैं, तो ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं लगता। वे याद दिलाती हैं कि आजादी की इस कहानी में लाखों जाने अनजाने चेहरों का योगदान है। अलग अलग भाषा, धर्म और इलाकों के लोग एक लक्ष्य के लिए साथ खड़े थे कि भारत को आजादी मिलेगी। इसलिए 8 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उस एकता, हिम्मत को याद करने का दिन है जिसने देश को आजादी की ओर बढ़ाया। जब आज तिरंगा शान से लहराता है, तो उसके साथ 1942 की वही आवाज भी सुनाई देती है, भारत छोड़ो। आज हम मना रहे हैं 84वीं वर्षगांठ क्विट इंडिया मूवमेंट डे के रूप में। दर्पण के अंतर्गत एक नजर में आज हम बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ के बारे में। आगे बढ़ेंगे साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी के साथ, संकलन नुपुर तिवारी की।

0: नमस्कार। शहर की तमाम गतिविधियों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम साप्ताहिकी में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे रोड सेफ्टी सप्ताह, भारत छोड़ो आंदोलन और मौसम की। आइए शुरुआत करते हैं हैंडलूम डे से। हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा का सम्मान करना, बुनकरों के योगदान को पहचान देना और स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह दिन वर्ष 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसने देश में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को नई दिशा दी। भारत का हथकरघा उद्योग देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बनारसी, बालूचरी, कांजीवरम, चंदेरी, पश्मीना, तांत और जामदानी जैसी पारंपरिक बुनाई न केवल देश बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखती है। यह क्षेत्र लाखों बुनकरों और कारीगरों की आजीविका का प्रमुख आधार है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। आज के दौर में मशीनों से बने कपड़ों के बीच हाथ से बुने वस्त्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हथकरघा उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ भारत की कला, संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रखते हैं। इसलिए हमें स्थानीय बुनकरों का समर्थन करना चाहिए और अधिक से अधिक हैंडलूम उत्पादों को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें यह संदेश देता है कि वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करते हुए हम अपने बुनकरों का सम्मान करें और भारत की समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा विरासत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि
1: 1905 7

0: हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन जुड़ गए। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बना और नई नई वेराइटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वेराइटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
1: आइए बात करते हैं रोड सेफ्टी सप्ताह की। कोलकाता में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ 3 अगस्त से 10 अगस्त तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद IPS ने पार्क सर्कल 7 प्वाइंट क्रॉसिंग से किया। इस अवसर पर कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों में सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके तहत शहर भर में जागरूकता रैलियां, शैक्षणिक कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी और संवादात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में स्कूली बच्चों ने सुरक्षित सड़क और दुर्घटना मुक्त भविष्य का संदेश देते हुए गुब्बारे उड़ाकर लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने शहर में स्थापित नए बायो टॉयलेट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया तथा आधुनिक यातायात प्रबंधन उपकरणों और सड़क सुरक्षा तकनीकों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कोलकाता पुलिस ने विशेष रूप से ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी से जुड़े गिग वर्कर्स से अपील की है कि वे समय पर डिलीवरी के दबाव में यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। तेज गति, गलत दिशा में वाहन चलाने और लापरवाही से बचते हुए सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें। पुलिस ने कहा कि सुरक्षित डिलीवरी समय पर डिलीवरी से अधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस ने सभी नागरिकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, यातायात नियमों का पालन करने तथा जिम्मेदारी से वाहन चलाकर सड़कों को सुरक्षित बनाने में सहयोग देने की अपील की।
2: सड़क निरापत्ता सप्ताह उपलक्षे अपना सकल के ही जरा धन्यवाद जानाई एवं एटा एकटा आनंदेर विषय आछे। सड़क निरापत्ता सप्ताह किन्तु शुद्ध सप्ताह बा व्यापी विषय नय, এটা সারা বছর ধরে চলে আমাদের এবং রোড সেফটি মানে সবসময় ইম্পর্টেন্ট আছে। যে কোনো প্রাণ আমরা হারাই এটা কিন্তু মূল্যবান আছে এবং এই মূল্যবান প্রাণ কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় হারানো খুব দুঃখের বিষয় আছে। নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে জননিরাপত্তা বিশেষ করে মহিলা সুরক্ষা এবং সড়ক সুরক্ষা নিয়ে সর্বোচ্চ একাধিকার দেওয়া হয়েছে। সমগ্র কলকাতা মহানগর জুড়ে হেলমেট ছাড়া মোটর বাইক চালানোর বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানটা কিন্তু মানুষের নিরাপত্তার জন্য বেশি আছে। আমরা যেই সড়ক নিরাপত্তা বা রোড সেফটি নিয়ে যেগুলো করি, ট্রাফিক ফাইন, ওর উদ্দেশ্য কিন্তু ফাইন নেওয়া নয়, উদ্দেশ্য আছে মানুষ সচেতন করা এবং বারবার যে ভুল করছেন ওই ভুল থেকে বিরত হওয়ার জন্য।
1: आइए बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी दिन मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर देशवासियों को करो या मरो का मंत्र देते हुए ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने का स्पष्ट संदेश दिया। यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संपूर्ण राष्ट्र का संकल्प बन गया। 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित अनेक शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन थमा नहीं। देश के कोने कोने में विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा स्फूर्त रूप से सड़कों पर उतर आए। कई स्थानों पर लोगों ने विदेशी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए और स्वतंत्रता की मांग को बुलंद किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा और व्यापक जन समर्थन प्रदान किया। इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता अब स्वतंत्रता से कम किसी भी विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि इस जन आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। आज भारत छोड़ो आंदोलन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति की याद दिलाता है। यह दिन हमें लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की प्रेरणा देता है।

आइए बात करते हैं मौसम की। पश्चिम बंगाल मौसम समाचार के हिसाब से पश्चिम बंगाल में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बंगाल के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना सहित कई जिलों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहने तथा रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। शहर की तमाम गतिविधियों के साथ साप्ताहिकी कार्यक्रम यहीं तक।

दर्पण कार्यक्रम का दूसरा पायदान साप्ताहिकी। साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम। अब आप सुनेंगे हिंदी फिल्म गीत रंग दे बसंती फिल्म से दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा और एआर रहमान ने संगीतबद्ध किया। सात बजकर 45 मिनट आप जुड़े हुए कार्यक्रम दर्पण के साथ।

7:50 आप जुड़े हुए जिस कार्यक्रम के साथ वो है दर्पण। आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से सुनेंगे सरफरोशी की तमन्ना, जिसे लिखा है समीर ने और ए आर रहमान ने इसे संगीत से सींचा।

सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिले बाजुओं में है। आप जुड़े हुए जिस कार्यक्रम के साथ वो है दर्पण, और दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आखिरी गीत इस कार्यक्रम का सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाज में जावेद अख्तर साहब के बोल को एआर रहमान ने संगीत से सींचा, बोस द फॉरगॉटन हीरो से। इसी के साथ इजाजत दीजिए और अगले कार्यक्रम के साथ रहिए।

67 अशारे 6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल सचेता, जिस पर आप सुन रहे हैं हफ्तावारी प्रोग्राम कहकशां। और कहकशां में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सूफिया शीरी। आपको सूफिया का पुरखलूस आदाब। और मैं बता दूं कि आज की बात में लेकर आई हूं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी तहरीक हिंदुस्तान छोड़ो की सालगिरह। तहरीक हिंदुस्तान छोड़ो हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद की तारीख का एक अहम और फैसला कुन बाब है। ये तहरीक 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुंबई इजलास में शुरू की गई। इस तहरीक का बुनियादी मकसद हिंद बरतानवी हुकूमत से हिंदुस्तान को फौरी तौर पर आज़ाद कराना था, इसलिए इसे क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो तहरीक कहा जाता है। इस तहरीक के अहम रहनुमा महात्मा गांधी थे। उन्होंने कौम को करो या मरो, डू और डाई का पैगाम दिया। उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तानी अवाम मुत्तहद होकर बरतानवी इक्तदार के खिलाफ पुरअमन और पुरअज़्म जद्दोजहद करें। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बरतानवी हुकूमत ने गांधी जी समेत कांग्रेस के मुतअद्दिद बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद तहरीक रुकने के बजाय पूरे मुल्क में फैल गई। तलबा, मजदूर, किसान और आम शहरी बड़ी तादाद में इस जद्दोजहद में शामिल हुए। कई मकामात पर मुजाहरे हुए, हड़तालें हुईं और लोगों ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तहरीक हिंदुस्तान छोड़ो को बरतानवी हुकूमत ने सख्ती से दबाने की कोशिश की, लेकिन इस तहरीक ने हिंदुस्तानी अवाम में आज़ादी का जज्बा मजीद मजबूत कर दिया। अगरचे फौरी तौर पर आज़ादी हासिल नहीं हुई, लेकिन 1942 ईस्वी की यह तहरीक बरतानवी हुकूमत के लिए एक वाज़ह पैगाम थी कि हिंदुस्तानी अवाम अब गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। 8 अगस्त को तहरीक हिंदुस्तान छोड़ के करारदाद मंजूर होने की याद में इस तहरीक की सालगिरह मनाई जाती है, जबकि 9 अगस्त को आमतौर पर क्विट इंडिया मूवमेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन हमें आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले बेशुमार लोगों की कुर्बानियों और अज़्म की याद दिलाता है। तहरीक हिंदुस्तान छोड़ो हिंदुस्तान की तारीख में इत्तेहाद, कुर्बानी, हौसले और आज़ादी की ख्वाहिश की अलामत है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी कौम की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए अवाम का इत्तेहाद और पुख्ता अज़्म बेहद ज़रूरी है।

भूल गए, हम मोहब्बत का सबक भूल गए, तेरी आंखों ने पढ़ाया क्या है। जमील मज़री के अशार, जिन्होंने 1904 ईस्वी पटना में विलादत हुई जिनकी, उनके एक बुज़ुर्ग सैयद मसर हसन अच्छे शायर हुए हैं। इनसे ख़ानदानी ताल्लुक पर सैयद काजिम अली को फ़ख्र था, इसलिए जमील तखल्लुस अख्तियार करने के साथ ही इस पर मज़री का इजाफा भी किया। इब्तदाई तालीम मोतिहार मुजफ्फरपुर में हासिल की, इसके बाद आला तालीम के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, आगा हशर, नसीर हुसैन ख्याल, अल्लामा रज़ा अली महफ़ैशद जैसी हस्तियों से फैज़याब होने का मौका मिला। जमील मज़री ने 1931 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। शेरगोई का आगाज़ वो तालीम के दौरान ही कर चुके थे। वहशत से असलाह लेते थे, उस्ताद को अपने शागिर्द की सलाहियत का इल्म था। जल्द ही इन्हें एतराफ़ करना पड़ा कि अब असलाह की ज़रूरत नहीं। तालीम से फारिग होने के बाद जमील मज़री ने सहाफत के मैदान में कदम रखा। यह सिलसिला तकरीबन 6 साल जारी रहा। इस दौरान इन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और कलम में रवानी आई। इस तरह नसर निगारी का शौक हुआ। सियासी मजामीन, इल्मी मकालात, नावल और अफसाना गर्ज उन्होंने बहुत कुछ लिखा। फ़र्ज की कुर्बान गह पर एक तवील अफसाना भी लिखा, जिसे बाज़ लोग नावलेट भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने सहाफती ज़िंदगी की तरफ भी कदम बढ़ाया। सहाफती ज़िंदगी ने अमली सियासत के लिए मैदान हमवार किया। 1937 ईस्वी में बिहार की कांग्रेसी हुकूमत में पब्लिसिटी ऑफिसर मुकर्रर हो गए। 1942 ईस्वी में कांग्रेसी हुकूमत से मुस्तफ़ा हो गई तो जमील मज़री भी पब्लिसिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी से किनारा कश हो गए। आखिरकार उन्होंने अमली सियासत के खारजार से किनारा कर लिया और पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद का मनसब कबूल कर लिया। 1964 ईस्वी में वो मुलाजमत से सुबकदोश होकर उर्दू शेर व अदब की खिदमत के लिए यकसू हो गए। गज़लों का मजमुआ फ़िक्र जमील और नज़मों का मजमुआ नक्श जमील के नाम से शाया हुए। अल्लामा जमील मज़री ने नसर की तरफ भी तवज्जो की और बहुत कुछ लिखा, लेकिन इनका असल कारनामा शायरी है। अपने कदीम शेरी सरमाए को उन्होंने बहुत तवज्जो से मुताला किया है और अपनी क्लासिक की रवायत से मुतासिर हैं, इसलिए इनके शायरी मौज़ू और उसलूब दोनों एतबार से कदीम और जदीद का संगम है। लिखे न क्यों नक्श पाए हिम्मत, कदम कदम पर मेरा फसाना, मैं वो मुसाविर हूँ जिसके पीछे अदब से चलता रहा जमाना। इतने अच्छे अशार लिखने वाले जमील मज़री बुनियादी तौर पर नज़मों के शायर हैं, लेकिन वहाँ भी तगज़ुल ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए इनकी गज़लों में भी तशकीक का गुबार नजर आता है। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी तादाद में मरसे भी लिखे। इनके शेरी मजमूए अक्स जमील, फ़िक्र जमील और इरफ़ान जमील के नाम से शाया हुए हैं। 23 जुलाई 1980 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के मौज़ा भेकतपुर में इनकी वफात हुई। मौज़ा सामीन, आप बरगी ख्याल के तहत अभी समात फरमा रहे थे जमील मज़री की शायरी। वक्त तेजी से भाग रहा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए चलिए सुनते हैं नजीब पाशा का अफसाना अनोखा कारनामा उन्हीं के ज़बानी, और वजाहत कर दूं कि ये अफसाना पहले भी समात फरमा चुके हैं, ये रिपीट है।

इस कहानी का अनुमान है अनोखा कारनामा। इंटरनेशनल हाई स्कूल हमारे इलाके का वाहिद हाई स्कूल है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों मजाहिब के मानने वाले लड़के और लड़कियां जेर तालीम है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उन दिनों नवी जमात का तालिब इल्म हुआ करता था और सुदीप जो एक बंगाली लड़का था मेरा क्लास फेलो था। सारे सब्जेक्ट के क्लास हम दोनों एक साथ करते थे, सिर्फ लैंग्वेज के पेपर में हम दोनों अलग हो जाते थे क्योंकि मेरी मादरी जुबान उर्दू थी और उसकी बंगला। एक दिन सुदीप ने बातों बातों में मुझसे कहा कि नजीब भाई, हम हिंदी फिल्में देखते हैं, उसके गाने भी मुझे बेहद पसंद आते हैं, लेकिन मतलब समझ में नहीं आता। सुदीप के इस सवाल पर मैं हंस पड़ा। फिर कुछ लम्हे के बाद अपने आप को संभालते हुए उसे बताया कि गाने के बोल हिंदी के नहीं बल्कि उर्दू जुबान के होते हैं, इसलिए गाने का मतलब समझने के लिए पहले उर्दू जुबान सीखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो मुझे अपनी उर्दू जुबान सिखा दे ताकि गाने का मतलब भी समझ में आ जाए। सुदीप ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने उर्दू जुबान सिखाने के लिए हामी भर ली। अगले रोज मैंने उर्दू कायदे की एक किताब खरीद कर सुदीप को दी और खाली औकात में उसे उर्दू सिखाने लगा। उर्दू जुबान के साथ सुदीप का लगाव और सीखने की चाहत

देखकर मैं बेहद खुश होता और अक्सर उसके घर जाया करता और उर्दू सिखाता। सुदीप को उर्दू जुबान से जिस कदर लगाव हो गया था, उसकी अम्मी सुधा देवी को इतनी ही नफरत थी। वो मेरे सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे जाने के बाद सुदीप से कहती, तुम्ही उर्दू पढ़े की कोरबे, उर्दू थी के तुम्हार कोनो लाभ होबे ना, शुधु समय नष्ट होबे। तुम उर्दू पढ़कर क्या करोगे, उर्दू से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ वक्त की बर्बादी है। इत्तेफाक से इनकी ये बात मैंने एक दिन सुन ली, लेकिन उन पर जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि सुधा देवी मुझे उर्दू पढ़ने की वजह से पसंद नहीं करती, हाँ मगर नफरत भी नहीं करती। दिल की बड़ी साफ थी, जो दिल में वही जुबान पर, लेकिन कभी मुझसे खफा नहीं होती। मैं अपना काम करता और वो अपना। सुदीप की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी अम्मी की बात सुनता और फिर उन्हें समझा देता कि अभी मेरा दोस्त आने वाला है, आप खामोश रहें, वो सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा। सुधा देवी ने मजीद कुछ नहीं कहती, सिर्फ तिलमिलाकर रह जाती। इस तरह दिन गुजरते गए और हमारी दोस्ती और ज्यादा मुस्तहकम हो गई। आज हमारे स्कूल का सालाना फंक्शन था, इसलिए तमाम तुलबा व तालबात बड़े खुश नजर आ रहे थे। बच्चों के साथ उनके वालदैन भी आए हुए थे। स्कूल के ऑडिटोरियम को रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया था। थोड़ी देर के बाद हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ तमाम असातजा हजरात स्टेज पर आए, तो उन्हें देखकर तमाम बच्चों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तमाम असातजा हजरात ने मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर तालियों का जवाब दिया। फिर कुछ लम्हे के बाद प्रिंसिपल साहब ने ड्रामे को पेश करने की इजाजत दी, तो बच्चों ने ड्रामे पेश किए, जिसकी खूब खूब तारीफ की गई। फिर लतीफा, गाना और गजल वगैरह का दौर शुरू हुआ। तमाम सलामीन ने बेहद तारीफ की। फिर अनाउंसर साहब ने एक ऐसा नाम पुकारा जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी, और वो नाम था सुदीप मुखर्जी का। अनाउंसर साहब माइक से ऐलान कर रहे थे कि अब आपके सामने आ रहे हैं नवी जमात के तालिबे इल्म सुदीप मुखर्जी, जो आप लोगों को उर्दू नज्म सुनाएंगे। ये सुनते ही सारे लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। कुछ बच्चे और बुजुर्ग भी एक बंगाली लड़के के मुंह से उर्दू की नज्म सुनने वाली बात सुनकर हैरत में थे, तो कुछ बच्चे आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि ये जरूर सारे लोगों के सामने अपनी हंसी करवाएगा। सुदीप के स्टेज पर आते ही पूरे हाल को जैसे सांप सूंघ गया। सबसे ज्यादा मैं घबराया हुआ था कि इतने लोगों के सामने कहीं सुदीप नर्वस ना हो जाए, लेकिन मैंने देखा कि वो पूरे अज़्म के साथ माइक पर आया और फिर वो हो गया जिसकी किसी को तवक्को ना थी। उसने नहायत अदब से सभी को नमस्कार किया, फिर अल्लामा इकबाल की तारीफ में दो चार जुमले कहे जो मैंने उसे सिखाए थे। फिर इसने नज़्म शुरू की, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो इस राह पे चलाना मुझको। नज़्म खत्म होते ही हाल में मौजूद सारे लोग पुरजोश होकर तालियां बजाने लगे। सभी को हैरत थी कि नज़्म पढ़ते वक्त सुदीप की जुबान इस कदर साफ सुथरी थी कि लग ही नहीं रहा था कि किसी बंगाली लड़के ने उर्दू नज़्म पढ़ी है। पूरा हाल तालियों से गूंज रहा था। प्रिंसिपल साहब खड़े होकर सुदीप की तारीफ कर रहे थे। फिर सुदीप ने सभी को बताया कि ये सब मेरे दोस्त नजीब की कोशिश का नतीजा है, तो सभी ने मेरे इस कारनामे की सताइश की और प्रिंसिपल साहब ने मुझे खूब शाबाशी दी। सुधा देवी ने आगे बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया। इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।

सुन रहे थे नजीब पाशा का अफसाना, और अब सुनिए आप मुकेश और कोरस की आवाज़ों में फिल्म हम हिंदुस्तानी के नगमा शायरी प्रेम धवन की, और जिसे मौसीकी से सजा है उषा खन्ना ने।

हमारा आपका साथ रहेगा तो हम बिल्कुल मिलकर लिखेंगे नई कहानी। लेकिन फिलहाल अपनी मेजबान सूफिया शीरी को इजाजत दीजिए और सुनते रहिए मुकेश और कोरस की आवाजों में फिल्म हम हिंदुस्तानी का नगमा।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग हैं और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग हैं। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है।

0: श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
2: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया।

0: है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
1: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉग्मा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहां वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन हैं, तो वहीं वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से हैं। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहत उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है।

0: भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तरकांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है, बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है। वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है, तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस

0: अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
0: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
2: January 14, 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत कातना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेप्चा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यहीं गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो, वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थीं। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय, वो पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेप्चा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
3: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
4: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेप्चा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था, और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीना तक, बाद में 3 वर्षों तक खरसांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि

0: 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खरसैंग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेप्चा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था।
1: उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
2: मैं सोमनाथ पांडे सिक्किम से, मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेप्चा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर्स वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेप्चा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तब वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका तीन नाम है, एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेप्चा था, तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है, तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तब तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेप्चा का नाम से अभी बन रहा है।
3: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेप्चा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
4: हेलेन लेप्चा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपरेखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र।

0: तो सबसे पहले स्मरण होती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: आई बिलीव दैट आई मस्ट प्रूव द एज ओल्ड प्रोवर्ब दैट द वुमन हैज द लास्ट वर्ड एंड द लॉन्गेस्ट वर्ड। आई हैव द लास्ट वर्ड नो डाउट, नॉट बिकॉज आई एम अ वुमन, बट बिकॉज आई एम एक्टिंग टुडे एज द होस्टेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: This is the Congress radio calling on 42.34 meters. Today, we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.
0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा

0: और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं है।
1: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करे, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीप शिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीप शिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है, कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वी एस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: সেমিফাইনালে অস্মিতাজ 21-13, 16-21, 21-13 সেটে স্বদেশ খেলোয়াড় রক্ষিতা রামরাজকে হারিয়ে দেন। ফাইনালে আগামীকাল চীনা খেলোয়াড় হান কিয়ানসির মুখোমুখি হবেন অস্মিতা। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরেকবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে জাতীয় স্বার্থে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আজ তিনি দিল্লি।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে অপর্ণা সিং। ग्यारहवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भोपाल घोषणा पत्र अपनाया गया। सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान। अमेरिका ने विदेशी कामगारों के लिए नई नौकरी खोजने की 60 दिन की मोहलत अवधि के समाप्ति प्रस्ताव की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध है और दबाव में नहीं झुकेगी। ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के तोमचो मितेई ने स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। गुरु नायडू सेनापति को 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चालिहा का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
2: प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कलाकारों के लिए और ज्यादा अवसर तैयार करने पर भी ध्यान दिया। बैठक में कलाकारों को बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और उसे बहाल करना भी एक अहम मुद्दा था। भारत ने ब्रिक्स देशों के कलाकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पेशेवर नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट योजना स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री शुरू करने की घोषणा की। बैठक में कलाकारों के अधिकारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कॉपीराइट वाले कामों के सही इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भोपाल ने सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य की सोच वाला ढांचा तैयार किया है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पारंपरिक ज्ञान, भाषाओं, लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री शेखावत ने कहा कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि इन सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमेरिका गैर अप्रवासी वीजा पर काम करने वाले कुछ विदेशी कामगारों को नौकरी छूटने के बाद नया रोजगार खोलने के लिए दी जाने वाली 60 दिनों की अवधि को समाप्त करने वाले प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। यदि इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो प्रभावित कामगारों को नौकरी समाप्त होने के तुरंत बाद देश छोड़ना पड़ सकता है। गृह सुरक्षा विभाग के इस प्रस्ताव की संघीय प्रबंधन और बजट कार्यालय में समीक्षा जारी है। इसके बारे में अधिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। 60 दिन की छूट अवधि वर्ष 2017 में विदेशी कामगारों और उनके आश्रितों को नौकरी छूटने के बाद नया रोजगार खोजने के दौरान अमेरिका में रहने की अनुमति देने के लिए शुरू की गई थी। अमेरिका के सीनेट ने टॉड ब्लांच को अटॉर्नी जनरल के रूप में मंजूरी दे दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निजी वकील को अब न्याय विभाग की औपचारिक कमान मिल गई है। रिपब्लिकन प्रभुत्व वाले सीनेट ने आज 50 के मुकाबले 49 मतों से ब्लांच की नियुक्ति की पुष्टि कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल में पाम बॉन्डी को शीर्ष पद से हटा दिया था। उसके बाद से ब्लांच पहले से ही कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के रूप में विभाग का संचालन कर रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमरीका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। लेकिन अगर अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल

रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा

0: हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात ने आज सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर हुर्मुज जल डमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। मंत्रालय ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर आरोप लगाया कि वो कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाकर और रणनीतिक जलमार्ग का इस्तेमाल आर्थिक दबाव बनाने के लिए करके समुद्री डकैती जैसी हरकतें कर रहा है। उसने ईरान से तुरंत ऐसे हमले बंद कर हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह बिना किसी शर्त के फिर से खोलने को कहा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पहले भी धमकी दी थी कि वे जल डमरू मध्य से गुजरने वाले उन जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो तेहरान के दुश्मनों से जुड़े हों या ईरान के निर्देशों का पालन न करते हों। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादियों ने युगांडा की सीमा से लगे पूर्वी कांगो के एक गांव पर हमला किया और 13 लोगों की हत्या कर दी। एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF ने यह हमला मांबासा के पास बनाना इकोले गांव में किया। बुल्गारिया ने कहा है कि पड़ोसी रोमानिया से उसके हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन अवैध रूप से आया और ट्रांस बाल्कन गैस पाइपलाइन के पास फट गया। प्रधानमंत्री रुमेन रादेव ने बताया कि बुल्गारिया सीमा के अंदर लगभग 100 मीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन से लगभग 1 किलोमीटर दूर ड्रोन फटने की घटना हुई और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। यमन में मारिब और हदर मौत प्रांतों में हाल में हुए हुती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने बताया कि हुती विद्रोहियों के बार बार होने वाले हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। टॉमचो मितेई ने 266 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। गुरनायदू सेनापति ने 2 पदक जीते। उन्होंने कुल 265 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। भारत की अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। आइए सुनते हैं करिश्मा राय की रिपोर्ट।
1: भारत के दो युवा खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला ही गेम रोमांच से भरपूर रहा। कड़े संघर्ष के बाद अश्मिता पहले गेम को 21-13 से अपने नाम करने में सफल रही। दूसरे गेम में रक्षिता ने जोरदार वापसी की और गेम को 21-16 से जीतते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे गेम में अश्मिता ने रक्षिता को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अश्मिता चालिहा के भिड़ंत कल चीन की हान किया नक्सी से होगा।
0: कल समाप्त होने वाले BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सीरीज इवेंट का कुल प्राइज फंड 2.5 लाख अमरीकी डॉलर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भोपाल घोषणा पत्र अपनाया गया। सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान। अमेरिका ने विदेशी कामगारों के लिए नई नौकरी खोजने की 60 दिनों की मोहलत अवधि के समाप्ति प्रस्ताव की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा उनकी सरकार कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध और दबाव में नहीं झुकेगी। ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के तोमचो मितेई ने स्वर्ण सहित 3 पदक जीते। गुरनायदू सेनापति को 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चालिया का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अमृत भूषण विद द वर्ल्ड न्यूज़।

have we got no

0: और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।